प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते

पछानै, कट कट के पट पट के जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह दर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब हीते रहत निरालम, जानत बे

जाको भीव न पावत वेदा, ताको कृपा हनि अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुध है देती, वर्णत भिन्न भिन्न तोह तेती, तुमरा लखन जाए पसारा, केह बिन सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बाहुर रच दीनी, कहूँ फूलरा जाहवै बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस्तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है, रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनिक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह श्व सकै न कोई।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता। केलविक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला। सुने गुंग जो जाहे, सुरसना पावई। सुने मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट, न तिन नर की रहै। हो जो या की एक बार, चौपई को कहै। चौपई संबत सत्रह है, सहस पणिजय। अर्ध सहस फुन तीन कहिजय। भाद्रव सुधी अष्टमी रव्वारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते कौ आंख तरे नहीं अन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहै, हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सा।

बेशुमार बेअंत स्वामी तेरु अंत न कि नहीं प्रहाव कोट पराद हमारे खंडा

कोई नाव न जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई निस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर आय घर नौने दया वै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तखतां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत। देख टेक फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे इशनान। चौंकियां झंडे मुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन

जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया, कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की

हम नीच कर्मा शरण पर की रखो शर्मा सो कहो टल गुर सेविय रहने सहज दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटीय तुद रिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीय सजन सच्चा पातशाह सिरसा दहो जिस पास बहिठिया सोहिय सब नांदा विसा हो सतनाम

जमकाल सहै सिर डंडाहे, हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पव खंडाहे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, भव सो

0: नानक चाओ ए हो, नानक चाओ ए हो,
1: नानक चाओ ए हो, नानक चाओ ए हो।
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
2: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
2: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद संग संग नानक गुर जिव गुर अमरदास कै गुर रामदास कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास
1: जिन सतगुरु से

अगंतक भजन असल कब गुरु रामदास तेरी शरण गुरु अमरदास तीर्थ पियो परगामी तारण तरण अगंतक

0: रंग प्रयात चंद नमो सर्व माने समस्ती निदाने
1: नमो देव देवे अपेखी अपेवे
0: नमो काल काले नमो सर्व पाले
2: नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
0: अनंगी अनाते निसंगी परमाते
2: नमो पान पाने नमो मान माने
0: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने
2: नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
2: नमो पान पाने नमो बांध बांधे
0: अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे
2: परभंगी परमाते समस्ती प्रभूते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
2: नमो राज अर्जेश्वरम परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे
2: नमो राज अर्जेश्वर परम वृद्धे
0: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
2: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षी अपरमी अपोगी अभुक्ते
2: नमो जोग जोगेश्वर परम जुगते
0: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे
2: नमो प्रेत प्रेत देवे सुतर मे
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
2: नमो शाह नमो पू पूपे
0: नमो दान दाने नमो मान माने
2: नमो रोग रोगे नमो तंग सनाने
0: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्र
2: नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्च दारण सर्वंग वनासी
2: अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी
0: सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद कर्ता
2: अतो ऊर्ध अर्धं अंग अंग हर्ता
0: परम परम परमेश्वर पोच पालंग
2: सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग
0: अचेदी अपेदी अनामंग कामंग
2: समस्तो पराजी समस्त सतामंग।

0: स्वरूपे
1: नमो सर्वमाने समस्ति निदाने
0: नमस्त्वं नाते नमस्त्वं प्रमाते
1: नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे
0: नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं पाले
1: नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे
1: नमो शाह शाहे नमो माह माहे
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
1: नमो रोग रोगे नमो शोक शोके
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
1: नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं
0: नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं
1: नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं
0: नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं
1: नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे
0: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
1: अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे
0: पालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासि
1: सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी
0: प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे
1: अखल जोगे अचल भोगे
0: अचल राजे अटल साजे
1: अखल तर्म अलख कर्मं
0: सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता
1: सर्वंग पाने सर्वंग माने
0: सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं
1: सर्वंग पुक्ता सर्वंग जुगता
0: सर्वंग देवं सर्वंग पेवं
1: सर्वंग काले सर्वंग पाले
0: वाल चंद पे प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख पार
1: शर्मान त्रिमान देव पेवाद उदार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुनकार
1: जतर ततर विराजे अतूतरो प्रसाल
0: नाम धाम न जा जाकर रूप रंग न रेख
1: आद पुरखोदार मूर्त जो नाद शेख
0: पेश और न पेश जाकर रूप रेख न राग
1: जतर ततर दिशा विशावे फैलियो अनुराग
0: नाम काम बहीन बेक ताम हो न जाए
1: शरण मांस बत मांस दे मानता है
0: एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक
1: खेल खेल खेल खेल अनंत को ब्रेक
0: देव प्रेम न जाने जे बेद और कते
1: रूप राम न जा पाछू जानिए के जेब
0: सात माता जात जाकर जन्म मरण बही
1: चकर बकर फिरे चतर चक मानिए पुरतीन
0: लोक चौदह के बिखे जग जा पई जे जाप
1: आ देव नाद मूरत था प्यो सबे जे थाप
0: परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख पार
1: शर विचव रख्यो संजन कर्ण पंजन हार
0: काल हीन कलास जुगत काल पुरख देश
1: तरम ताम सो परम रहत पूत लख पेश
0: अंग राग ना रंग जाके जात पात ना नाम
1: गर्व कन्या दुष्ट पंजन मुक्त आए काम
0: आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख दूत
1: गर्भ कंजन सर्व पंजन आद रूप असूत
0: अंग हीन अपंग नातम एक पुरख पार
1: सर्व लाज सर्व काज सर्व को विपार
0: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख
1: सर्व शास्त्र न जानिए जे रूप रंग और रेख
0: परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित
1: कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवि बहु चित
0: मधुपा चंद प्रसाद गुणगान उदार मैं महापा
1: आचरण पांग उपमा अनंग
0: अंको प्रकाश निज नाना
1: आजान बाहु शाहान शाहू
0: राजान राजपान आन पान
1: देवान देव उपमा महान
0: इंद्र बालान बा
1: रंकार रंग काला।

0: चक्र हता
1: चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
0: चतर चक्रवर्ती चतर चक्रपति
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र

0: कारण को निंद है के रोजी देहंद है
1: के राजक रही में के कर्मं करी में
0: के सर्वं कली है के सर्वं दली है
1: के सर्वत्र माने है के सर्वत्र दाने है
0: के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे
1: देशे के सर्वत्र पेशे
0: के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे।

0: सर्वत्र पाले के सर्वत्र पेखी की सर्वत्र पेखी के सर्वत्र सुख के सर्वत्र पोख के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश
1: न
0: सर्वत्र मानिए के सेवम प्रदानी के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए के सर्वत्र पाने के सर्वत्र
2: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
0: के सर्वं कली में के परम फही में
2: के साहिब कलाम
0: के हुसैन वजू है तमाम रजू है
2: मेसुल सलाम में सली खुद मदाम में
0: गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते बलिंदुल मकान
2: में जमीन उल जमाने
0: तमे जुल तमाम में रजू वाल निदाने
2: हरीब अल अजीम में अरजाय के यकीन है
0: अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है
2: अजीजुल निवार है गरीब उल खिराज है
0: निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त प्रभूत है
1: सो जगत सुदा है सदैव स्वरूप है
0: हे बंद
1: अपेति अनूप है समस्तो परास है सदा सर्व साज है समस्तुल
2: तमाम तमीज तमाम में जोल दाने हरीफ अल अजीम मेर जाय की यकीन है अनेक उस तरंग है अभेद है अपंग है
0: जी जो निवाज है गनी मुल्क राज है
2: रोग स्वरूप है तर मुक्त विपूत है
0: कृपा है संयुक्त सुदा है
2: सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त पराज है
0: सदा सर्व साज है
2: समस्त सलाम है सदैव काम है
1: निवाज स्वरूप है दाद है अनूप है
2: ओम आद रूपे अनाद स्वरूपे
0: अनंगी अनाम में त्रिभंगी त्रिका में
2: वर्गं त्रवादे गंजे गादे
0: सुवन सर्पागे सुसर बानुरागे
2: विभूत स्वरूप है शिज है अशूत है
0: नरकं परनाश है पृथ्वी प्रवास है
2: निरुक्त प्रवाह है सदैव सुदा है
0: विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
2: निरुक्त सुदा है विभुक्त प्रवाह है
0: अनुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है।

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वय प्रसाद स्वये श्रावक सुध समूह सदान के देख फिर कर जोग जति के
1: सुन सुराधन सुध सुधारक संत समूह अनेक मति के
0: सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखित प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाए कृपा होते करति बिने करति के
0: मात मतंग जरे जार संग अनूप तंग सुरंग सवारे पारी पुजान के भू बलि वेद ने आवत शीश न जात बिचारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजे टोल मदंग नगारे।

0: पिन पिन तो तेती रूप अनूप स्वरूप पारंक प्योर आफ गई पुपा फूल राजा है बैठा को सिमट पो सब गिर गैठा रक्षा मेरी तुम करो सिख बाण सिख संगरो सरनी परे तिनके दुष्ट के दुआ मरे
1: परे तिहारे तिनके तुम संकर सब तारे
0: ओ कल को एक बार ते ये ताके काल निकट लिए है
1: अच्छा होता है सब काला दुष्ट और इष्ट रे तत्काला
0: पर दिस्तन जान हरो ताके ताप तनक मोहरे
1: रिद सद कर्मो सब होई दुष्ट छा छा सक

0: संबत 1765 जयर्थ सहस्फुन तीन के ही जय
1: भाद्रन सुदी अष्टमी रवि बारा तीर सौद्रा गन सुधारा
0: सुभैया पाए गे जब ते तुमरे तब ते को आग तेरे नहीं आने
1: राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मते न मान्यो
0: सुमर शास्त्र वेद सब

0: जग में आया,
1: जिना तेरा रचन रचिया सो हर मन नवसाया,
0: गुर प्रसादी हर मन बसिया पूरब लिखिया पाया,
1: कहे नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सतगुरु सो चित लाया,
0: ये नेत्रो मेरो हथु में जो तरी हर बिन वरना देखो कोई,
1: हर बिन वरना देखो कोई नगरी हर निहालिया,
0: संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नजरी आया,
1: गुरु प्रसादी बुझे आ जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई,
0: कहे नान के नेत्र अंध से सतगुर मिलिए दृष्ट होई,
1: हे सुनो मेरे ओ साचे सुनने नु पठाए,
0: साचे सुनने नु पठाए श्री लाए सुनो सतबाणी,
2: ये सुनी मंत्र
1: रसना रस माणी,
0: सच लख वडाणी ता की गत कही ना जाए,
1: हे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचे सुनने नु पठाए,
0: हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया,
1: बजाया वाजा पवन नो द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया,
0: गुरुद्वारे लाए पावणी इक ना दसवा द्वार दिखाया,
1: हे अनेक रूप नौ नव तिसदा अंत न जाई पाया,
0: कहे नानक कर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया,
1: यो साचा सोहेला साचे कर गावो,
0: गावो ता सोहेला कर साचे जिथे सदा सच त्यावे,
1: सचो त्यावो जा तुन पावे गुरमुख जिना बुझावे,
0: यो सच सबना का खसम है जिस पक से सो जन पावे,
1: कहे नानक सच सोहेला सचे